ठाकुर होए आप दयाल, भई कल्याण आनंद रूप होई गए, उबरे बाल गोपाल, हरहाओ दुकर जोड़ करी बेनंती, पार ब्रह्म मन त्याया, हा दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया, वरनारी मिल मंगल गाया, ठाकुर का जयकार, कहो नानक जन को बल जाइए, तो सबना करे उधार, एक ओंकार सदगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवां, अपने सगुर पै बिनो कहया, पै किरपाल दयाल दुख पंजन, मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ, हम पापी पाखंडी लोभी, हमरा गुण अवगुण सब सहया, कर मस्तक तार साज निवाजे मोहिद जो खया, परोपकारी सर्व सुधारी सबल दर्शन सह जाया, कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर तरया, देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारे, सरने आयो रखन हारे, हरहाओ सर्व पाख राख मुरारे, आग गए पाछे अंति वारे, जब चितवो तब तुहारे, उन सुमार मेरा मन सुधारे, सुन गावो गुरपचनारे, बाल बल जाओ सादर सारे, मन में राखो एक असारे, नानक पा मेरे करने हारे, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोह दीजे, कर संतन का चेहरा रहाओ, प्रातः काल लागो जन चरणी, निस्बासर दर्श पावो, तान मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गाव, सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रहिए, एक आधार नाम तन मोरा, अंत नान क्यों लइए, अराग देव गंधारी महला पंजवां, कार तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद, मीता ऐसे हर जीव पाए, छोड़ न जाई सदगी संग, अंदन गुर मिल गाए रखाओ, मिले ओ मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कत हूं जाए, अनक अनक पांच बो पेखे, प्रे रोम न समसर लाए, मंदर भाग शोभ दुवारे, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रग माने, ग्रे प्रथीते सताए, देव गंधारी पंजवा, दर्शन नाम को मने आचे, परम आयो है सगल थान रे, आए परे संत पाछे रखाओ, केसों सेवी किस आराधी, जो दिष्टे सो गाचे, सासंद की सरणी परिये, चंद्रे मन बाचे, जुगत न जाना गुण नहीं कोई, मां दुत्तर माया छे, आए पयो नान गुर चरणी, तो उत्तरी सगल दुरा छे, देव गंधारी पंजवा, अमृता प्रे भजन तुहारे, आसुंदर मन मोहन प्यारे, सबु मद निरारे, अरहाओ, राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, मोहे ठाकुर की दरसारे, दीन द्वारे आयो ठाकुर, शरण परयो संत हारे, कहो नानक प्रा मिले मनोहर, मन शीतल बिगसारे, देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पारे उतारयो, दीन दयाल पय प्रभ अपने, बौड़ जन्म नहीं मारयो, हरहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रतन जन्म नहीं हारयो, प्राप गुण गाय बेखे बन तरया, कुले समूह उधारे, चरण कमल बस्यारद पीतर, साल ग्रास उचारियो, नानक ओढ़ गई जगदीसर, उने पुने बलिहारियो, अराग देव गंधारी महा

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नव निधे। ग्रे लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए। नानक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उच्चरा हर जस।

भगत मंगै हर भगत पाईए प्रभत आईए जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अर्प तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल भगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म जो

तिर पवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई। बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बंत बनाई। बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम। तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम। प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

आपे हर एक ना उजड़ पाए। हर सच्चा साहिब सच तपाव कर वेखे चलत सवाए। गुर प्रसाद कहे जन नानक हर सच्चे के गुण गाए। श्लोक महला तीजा दरवेसी को जानसी विरला को दरवेस। जे कार कर हंडे मंगदा तिग जीवन तिग वेस। जे आसा अंदेसा तज रहे गुरमुख पिखिया नाओ। जिसके चरण पखाली है नानक हो बलिहारे। जाओ महला तीजा नानक तरवर एक फल।

बिख माया तन संच मर अंत होए सवशार कर्म धर्म सो संजम करे अंतर लोभ विकार नानक जे मनमुख कमावे सो थाए ना पावे दर गए हुए खुवार पौड़ी आपे खाणी आपे बाणी आपे खंड वर पंड करे आ समुंद आप गए सागर आपे ही विच रतन तरे आप लहाए करे जिस कृपा

नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है, अंधे कर्म कमाए सबदे सो चित न लावई, जित सुख वसे मन आए तामस लगा सदा फिरे, अहे निस जलत बिहाए दुत भावे सो थीए, कहना किशु न जाए महला तीजा, सदगुरु फुरमाया कारी एक करे हो, गुरु द्वारे होए के साहेब संभाले हो, साहेब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट के अंतर ज्योत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू एहो लाए हो, सगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐथ सुखे अंदर रखसी अगे हर्षों केल करे हो पौड़ी, आपे पार अठारे बनस्पत

हिंदु मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार। पौड़ी सब क्यों तेरे वस है, तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो। श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा, सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए। महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ए योगी की नगरी सब को वस, पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए। पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक से बड़ भागी जिन घर नाम के आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़हंस महला तीजा, हो में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हमें जो सेवा ना हो गई कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ, होमे सब शरीर है, होमे ओपत होए, होमे वड़ा गुबार है, होमे विच बुझ न सके कोए, होमे विच भगत न हो वई हुक्म ना बुझिया जाए, होमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़हंस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर घर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाल सेमर सेमर पे निहाला जत कद पेखो साधु सरना हार गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा विसरनाई प्रव दीन दयाला तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ जे चित आवे तो थान सुहावा जित वेला विसरे ता लागे हावा तेरे जी तू सदगी साथी संसार सागर ते कढ दे हाथी आमन जाना तुम ही किया के तू आके ते दुख ना थिया तू एको साहेब अवर ना होर बिनो करे नानक कर जोर वढ़ंस महला पंजवा तू जाना है ता कोई जाने तेरा दिया नाम खाने तू अचरज

अम्माली बिन फिर काम न आए। जा से बात न पुछिया अम्माली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अम्माली जिन सो रहा समाए। होवारे तिन सुहागणी अम्माली तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा परमसा अम्माली तिचर मैं जाणिया प्रदूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु अम्माली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखां सुख पाया अम्माली तेर सर्ब रहा पर पूरे। जन नानक हर अंग माणिया अम्माली गुर सतगुर कै लग पैरे। वढ़हंस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की।

ब्राह्मणा सभ्यो पाइगन आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे, सब उपाइगने आप आपे नदर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाइगे आप आपे सर्ब सुमाना, सर्बे सुमाना आप तू है उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे एक ना पेख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ एत परम फुलाना, सदा दया करो अपनी ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुर नार सुगड़ सुजाना, सुर नार सुगड़ सुजान गाव है जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही अहला जन्म गवाव है।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सदगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला जिस

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप शान गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहा सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बार वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सतगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन्म बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए। ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए, रतन पदार्थ वणजिए जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम, कूड़ बोल बिग कामणी बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई, पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा। खोटे खरे

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बनजारो सदड़े आए तिना जानिया हुकम सत्य करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मिलन हारो रूप ना जाने सोनिए हुक बदी सिरकारो बालक बिरत ना जाननी तोड़न खेत प्यारो नाउ दर ठाके।

सुरत मुई मर माइये मैरुनी दरबारे रोवो कंत मिघे लियो सच्चे के गुण सारे जल मल जानी ना भालिया कपड़ पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मुए मन मारे जानी विचुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए तेरे सचड़े हित प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदे तामणिया तेरी छोड़ी विदन कार कर कर कंत महेलिया रूड़े गेत प्यारे मैं तिर सच सालाना हो रहसड़ी ना पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया सातन सासी गारो आवो मिलो सहेली हो सिमरो सिरजनहारो बैयर नाम सुहागणी सच सुवार नहारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वढ़ांस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिए कड़ कड़ शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाण।

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

बिन सतगुर परम पुलाणिया, क्या मोह दिसन आगे जाए, क्या देन मोह जाए, अवगुण पछताए, दुखो दुख कमाए, नाम रतिया से रंग चलूला, पिरके अंक समाए, ते जेवड़ अवर ना सूजई, किसे आगे कहिए जाए, तू सच्चा सच सलाहिए,

पौड़ी। गुर सिखा मन घर प्रीत है, गुर पूजने आवे हर नाम वणंजे रंग सिउ, लाह हर नाम ले जावे। गुर सिखा के मुख उजले हर दरगे पावे, गुर सदगुर बोल हर नाम का, वड़भागी सिख गुण सा।

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया शब्द न लागो पाओ ओस नु सुख न उबजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए सह संजमकार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसके घर दीवान हर होए तिसकी मुठी विच जगत सब आया तिसको तलकी किसे दी नाही हर दीवान सब आन पैरी पाया मानसा क्यों दीवाणो कोई नस पज निकले हर दीवाणो कोई किथे जाया तो ऐसा हर दीवाणो।

ब्राह्मण सारा यो मनुआ सदा सुख वस सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करामन हारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाऊ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया।

रिद सिद्ध समूह नाम नवस्ते मन आए, गुरसेवाती मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए, नाम रतन हर प्रगट होआ, नानक सहज समाए। महला तीजा। शब्द साधन आयो नाम न लगो प्यार, रसना फिता बोलना नित नित हुए खुआर, नानक किरद पै कमावना कोई न मेटन हार। पौड़ी। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम को सांते आई। तन तन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। तन तन हर भगत सतगुरु हमारा, जिकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई। तन तन हर ज्ञानी सतगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को साध समध दिखाई। तन तन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला। कर ही मुंद विदेश तेर।

गुरप्रसाद सोरठ महला पहला कर पहला चौप दे सबना मरना आया विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणिया आगे मिल के नाहा जिन मेरा साहिब विसर वड्डी वेदन तनाह ई सहायो साचा सोए जा की नदर सदा सुखोए रहाओ वड्डा कर सालाना है।

तेत तन धूड़ तुमाई, मन मान्या नाम सखाई, पाए परो गुर कै बलिहार, जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जस्यों झूठ प्रीत मन बेदया, जन सुवाद रचाई, माया मगन ऐस मंगजोह है, नाम ना लेवे मरे भिखाई, गंधन वैर तहतकारी, शब्दे सुरतन आई, रंग न राता रस नहीं बेदया,

निर्मल नाम जपो सदगुरमुख अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्याग हो सदगुर बचनी फल पाही जियो। ज्यो पावे त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो। सोरठ महला पहला पंच बदे

मन रे समझ कम मत लागा, नाम सार अनस लोक हन हे पछताए अभागा रखाओ। आपत को हरख जाद को रोवे, ए दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया।

गए पाई, गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किछु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर कै खेत अपार आया सो परवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई, गुर सब दी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटिगे पाई। पूछो ज्ञानियां जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जू तेरे मन वसे पाई, सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरे मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर शरणाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सदगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मगना पाए। नानक सतगुर मिले ता

अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सब्त है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

प्यारा आपे शब्द समाहा, आपे लिखने आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओमाहा, आनदन आनंद होवे वडभागी, लै गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावर सुंदरा प्यारा, आपे वंश वजाहा।

तुम सबसा जे सा जनेवा जे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जच कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै पाछै।

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा आचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे पाई यो मन तेरा पाई रखाओ संतन स्यों मरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हमला खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो वाट्यो सगलो लेखा महा आनंद पय सुख पाया संतन कह प्रसाद दे कहो नानक हरसो मन मानिया हरंगर ते विसमा दे। सोरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो।

जो करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए छानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह, पर दारा संग फाक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा, पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी, जपंद करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है, हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे, तो जन निर्मल जीवे, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी, आन दिन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कड़ा सुहेली, आद अंत मद नानक को, तो प्रभ होवा बेली। सोरठ महला पंजवा, पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी थारी, संत या बताव हुकारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी, देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी।

मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, ऊंच नीच मैं जोस माणी, खड़कड़ माधो जिया, संतो काड़कड़ रहे आसमायो, पूर्ण पूर रहे हो सर्व मैं, जल थल रमैया आयो रघाओ, गुण निधान नाम जगावे, सदगुर परम चुकायो, सर्व निवासी सदा अलेपा, तब मैं रहे आसमायो, सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन होए आनंदा, बिन से जन्म मरण पै दुखी, चार पदार्थ न बिंद पावे, बौर न तिस ना भुखी, जा को नाम लैत तू सुखी, सा सा त्याहु ठाकुर कहो, मन तन जीरे मुखी रखाओ, सांध पावे होवे मन शीतल, अगन अंतर तुखी।

ए भीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलावो, अपनी बेद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ। विसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड पागी, जन नान कते ना ताव। सोरठ महला पंजवा, जाके सिमरन सब कछ पाइये, विरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई। हर घर सिमरू संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ। सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नांग प्र तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावे।

आप गुर गोपाल प्रसोई जा की शरण पया सुख पाई है बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग प्राप्त तिन पेट दुर्मद खोई तिन की तूर नानक दास बांछ है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवार है सूखा मन साधार है दर्शन पीड़ित होत निहला हर का नाम विचार है मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देव है काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा अपना दास हर

जन की लाज रखाई, साध संगत तेसा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, फलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव किया पे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल, अरहाओ अन दिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो न पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याए नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा तिस पै क्या

पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे माग पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सदगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जीवे से वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पनवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा प्रा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवै पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी रव रव रया पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाईये सार संग मिल त्याईये मार बांशित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदर मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन तिर परदेश सिधायो हुण नई संदेश रोम आयो एक उसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो।

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाती पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्राप पाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया सुख सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान इच्छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुपाय मिले गोपाला

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्म ताके सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्यायी, सोरठ महल्ला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई, सासंग कब हु नहीं कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, तोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, जिस बासर विखेन को तावत के बदरो को तागे रखाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यु बिरथा जन्म सिरावे, मदमाया के पयो बाबरो तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जब घी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी।

जी तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताजले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी सगरे तन त्यों लागे जल ही निरतन देखो नरको संग छाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इन से उन्हों लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ था छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल

सहज पियाई। दुबधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई। सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुकसदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग। करम सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामंग। मान मुख झूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग। जिन चाख्या से साध जानन, ज्यो गूंगे मिठे आई। अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई। गुरदाता मेले तामत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम फुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुम चला मनहारा। सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगनंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यान। नामन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानंग। सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग। पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग। तोरठ महला पहला तेतुकी, आस्था मनसा बंधनी पाई। कर्म तर्म बंधकारी, पाप जाया पाई। बिन से नाम सारी, हे माया जग मोहनी पाई। कर्म सबे वेकारी, सुन पंडित कर्माकारी। जित कर्म सो उपजे पाई, तो आत्म तत् विचारी। रखाव सात वेद बके खड़ो पाई, कर्म करो संसारी। पाखंड महल न चूके पाई, अंतर महल वकारी। इंद डूबी माकुरी पाई, ऊंडी सर कै पारी। दुरमद कणी विभूती पाई, दूजे पाए खुवाई। बिन सतगुर नाम न पाई गे पाई, बिन नामे परम न जाई। ता गुर सेवे ता सो पाए पाई, आमन जान रखाई। साच सहज गुर ते उपजे पाई, मन निर्मल सा सुमाई। गुर सेवे सो बूझे पाई, गुर बिन मगना पाई। जे अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिखाई। पंड दही वलोई गे पाई, विचो निकले तत्। जल मतिये जल देखिए पाई, त्यो जग एहावत। गुरम परम गुचिए पाई, कर कर दियो अलख। त्यो तागो सूत को पाई, दैत से बंधो माए। दिन गुर गांठना छूटी पाई, ताके कर्म कमाए। त्यो जग परम पुलाया पाई, कहना किशु न जाए। गुर मिले पौ मान मस्ते पाई, पाए मरना सच लेख। मजन दान चंगे आईया पाई, दर गए नाम सेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वसिया चूका पेख। त्यो तनहार सराब को पाई, वखर नाम अपार। त्यो वखर वापारी सो दृढ़ पाई, पुर शब्द करे विचार। धन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार। सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुरु से व्यापारे। तिनके साथ तरे, बिना ठाक ना पाए प्यारे। अमृत रसन हरे, बूढ़े पारे पाए बिना प्यारे। तारे नदर करे, पी तू है सालाना प्यारे। पी तेरी सालाह, बिन बोझ पै डूबिए प्यारे। कंधी पाए कहा रहाओ, साला ही सालाना प्यारे। दूजा अवर न कोए, मेरे प्रसालाहन से पले प्यारे। शब्दरते रंग होए, किसकी संगत जे मिले प्यारे। रसले तत्व विलोए, पद प्रवाना साज का प्यारे। नाम सचा निशान, आया लिखले जामना प्यारे। हुक्मी हुक्म पछाण, गुर बिन हुक्म ना बूझिए प्यारे। साचे साचा तान, हुक्मे अंदर निम्या प्यारे। हुक्मे उधर मझार, हुक्मे अंदर जम्या प्यारे। ऊंदो सिर के पार, गुरमुख दर के जानिए प्यारे। चले कार्य सार, हुक्मे अंदर आया प्यारे। हुक्मे जादू जाए, हुक्मे बन चलाई गए प्यारे। मन खुले सजाए, हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे। दरगे पैदा जाए, हुक्मे गणत गणाई गए प्यारे। हुक्मे होमे दोए, हुक्मे पवे पुआई गए प्यारे। अब गुण मुठी रोए, हुक्म संजापे साग का प्यारे। सच मिले वडे आई होए, आखने उखा आखिए प्यारे। च
ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਸਚਨਾ ਓ ਜਿੰਨੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਓ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਨਾਓ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਜੇ ਥੀਗੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨਮਸ ਬਾਣੀ ਧਾਰ ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸਜ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਲਿਖੋ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਪਿਆਰੇ ਸਜ ਲਿਖੀ ਉਰ ਧਾਰ ਤੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੀ ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤੋ ਨਿਰਮਲੋ ਪਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਮਨ ਹੋਏ ਹਮ ਪਰਾਧੀ ਨਿਰਗੁਣੇ ਪਾਈ ਤੁਝੀ ਤੇ ਗੁਣ ਸੋਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰ ਵੇਖ ਹਉ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀਆ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਸੇਖ ਰਹਾਉ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਮੋਇਆ ਭਾਈ ਚਿਤਰਾਈ ਪਤ ਖੋਏ ਚਿਤ ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਸਚ ਵਸੇ ਪਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮੋਏ ਰੂੜੋ ਰੂੜੋ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਰੂੜੋ ਲਾਲ ਚਲੂਲ ਜੇ ਮਨਹਰ ਸੁਮੈ ਰਾਗੀਏ ਪਾਈ ਦਰ ਕਰ ਸਾਚ ਅਪੂਲ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਵਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਚੁੱਕਾ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨ ਜਲ ਮਲਕਾਇਆ ਮੰਜੀਏ ਭਾਈ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤਨ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰ ਸੁਨਾਈਏ ਭਾਈ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਆ ਦੇਹ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ ਜਲ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇਹ ਗੁਰਬਿਨ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਭਾਈ ਜਗ ਬੁੱਢੇ ਪਦ ਖੋਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜੈ ਪਾਵੇ ਤੈ ਦੇ ਬਈਅਰ ਬੋਲੇ ਮੀਠਲੀ ਪਾਈ ਸਾਚ ਕਹਿ ਪਿਰ ਪਾਏ ਫਿਰ ਗਏ ਬੇਦੀ ਸਚ ਵਸੀ ਪਾਈ ਅਤ ਕਰਹੀ ਹਰਨਾਏ ਥਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੁਝੇ ਸੁਜਾਨ ਜੋ ਬੀਦੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਪਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਈਦਨ ਅਦਕ ਸਕੇਲੀਏ ਪਾਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਚੁਗ ਪਾਏ ਖੇਨ ਭਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਸੁਪਾਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ

प्रहला जन तुराख लय हर जीओ हर नागस मार पचाया गुरमुखा नु प्रतीत गए हर जीओ मनमुख परम पुलाया हर जी ए तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरणाई रहाओ भगतां नु जम जोए न साकै काल न नेड़ै जाई केवल राम नाम मन वसया नामे ही मुक्त पाई रिद्ध सिद्ध सा भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह हो खनली तोती उजली ना होवई। जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे, उल्टी होवे मत बदला हो नानक मैल ना लगई। ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी, ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे। गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है, हर भगती माए समाहे। पौड़ी हर हर मेल सा जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर सदा मान। हर जप जप औखद खादिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिन्ना साध ग्रासना विसरै से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा। रे जन उथारे दब्यो तुत्या गई विखाए, सगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ। श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए, जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए। नानक गुर सरणाई उबरे सच मन शब्द त्याए। महला तीजा। सबदरते होमे गई तो बावंती नार, तिरके पाने सदा चले ता बनिया सीगार। सेज सुहावी सदा पिर रावे, हर वर पाया नार। ना हर मरे ना कदे दुख लागे, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गो प्याया अपना, ते नर बुरियारी। हर जियो तिन का दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी। ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन, ज्यो धरकट नारी। वडभागी संगत में गुरमुख सवारी, हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजे, फिर दुख न लगे आए। जमण मरना मिट गया, काले का किस नाम बसाए। हर से ती मन रव रहा, सच्चे रहा समाए। नानक हो बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। तिन सबदे शुद्ध न हो गई, जे अनेक करे सीगार। फिर की सार न जाने, दूजे पाए प्यार। साक शुद्ध साक कुलखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम ते आई हर उचरा, हर लाहा लैणी। जो जपदे हर घर दिन सरात, तिन्हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मेल्या सैणी। श्लोक महला चौथा। हर दर्शन स्यो प्रीत है, हर दर्शन को मित। हर दर्शन के वस है, जो जंती कह बस जंत। हर के दास हर त्याय दे, कर प्रीतम स्यो नेहो। कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में वरसे मेहो। जो हर दर्शन की उस्तत है, सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई पाम दी, जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याय दा,

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

मन पवने सुख बनया केशे जोग प्राप्त गनया रखाओ गुरद खिलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिगे दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल परया जल मिटिया उबा करया कौ कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ

हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सोनरी बाई।

राजा राम को रास दे रस अनस बिसरजा ही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

तौ हम बाती, जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस, भगत हेत गावे रवदास। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास चुमारा। चमरटा गांठ न जनई, लोग ठावे पन ही। अरहाओ आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रूपो। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हो वह गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। नैनो नीर बहे तन कीना, पए किस दुधवानी। रूदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै,

पदार्थ पाया, आनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपेश पाया, हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ, रसना रमत सोंत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना नानक बिन वह सोगश पाईए पूर्व लिखे का लहना नाम खसम का चितन किया कपटी कपट कमाना जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तप हे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रह आराखे जां सोए जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुन उठ चलना मोत के ताल क्या मो दिसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सुचित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ सच सिमरे होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तस आगे तरे साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगह पावे मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो सब जगह सार तना श्री मोहल्ला पहला जियो तब है बारो बार तब तब खावे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए क्यों पक्का रोगी बिल लाए बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए रहाओ जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कारख दा गादा दाग दोष मुझ चलिया लाए।

खोटा कामन आवे वेख, नानक जेब च रुपा होए, खरा खरा आखे सब कोए रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया खाए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाणे, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवित मरे, तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दान सबन सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बूझे सो परवान, जिस सिर दरगह।

आप मुक्त अवरा मुक्त करावे, हर नाम जपे करते सुख पावे, बिन सतगुरु सब मोई बिर लाए, अन दिन दाजे सांत ना पाए, सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाए, नानक नाम सांत सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तन अंतर नाम समाले, जी जंत जिने प्रद पाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कई नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावे, अंतर प्रगास

ऐसी भगस करीजे पंत नानक परम पड़ खूले गुर प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया।

बनावे पाती, नानक जन तुमरी सरणाई, हर राखो लाज पघाती, प्रणासरी महला चौथा। कर जो का धर्म कहो तुम पाई, के छूटे हम छुटका की, हर हर जा बेड़ी हर तुलखा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जप्यो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखया, का छूटी जमकी बाकी, हर के संत जप्यो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिनिय रसूर तृष्णा अगन बुझानी, सिर चरे चंद चंदा की, तुम वड़ पुरख वड़ अगम अगोचर।

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी और पूरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर

प्रहित हर चंदौरी बन हर पात्रे ए है तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत। जन्म जन्म के किल विघ दुख फागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

पतत पामन गोसाई पोर सूह आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभु के मन पाई नाम जपत तृष्णा सा बुझी है नानक तृप्त अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभु की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याल तब हुटो हरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओ डीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ औं बलिहारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन का

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमकी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवा पूजा वर्त तिलक इस नाना।

इन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हल्त पलदता के आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार हरहाव साध की शोभा आत्मसकीनी संत वडाई हर जसकीनी आंध संतन कै भगत गोविंद सूग संतन कै बिनसी चिंद कै साध संतन होवे अकत्र ते हर्ज गावे नाद कवत साध सभा में अंध विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम दुए कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभु दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संता तूर तनासरी महला पंजवा तो कद डरे जे खसम सुमारे डर डर पचे मनमुख वेचारे अरहाओ फिर ऊपर माल पिता गुरदेव सबल मूर्त जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल सा संत होवद परगास जीन का दाता पूर्ण सब ठाए कोड़ कलेस मिटे हरनाए जन्म मरण सगला दुख नस गुरमुख जाके मन तन बस जिसनु आप लै लड़ लाए दरगे मिले तसे ही जाए सही भगत जे साचे पाने जम काल ते पए निकाने साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार घट घट अंतर सगल आधार।

प्राण पच्चित राख सगल गए मरना रहाव। चंदन चोरस पोग करत अनेक है, बिखिया विकार दिग सगल गए फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तान तन अपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो। अर्थ द्रव देख काच संग ना ही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनाश्री महला पंजवा कर सतवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेस लो मोह मा पौजल तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन निधान तारे। चरण कमल नमस्कार कुन गोविंद बिचारे, साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे। तनाश्री महला पंजवा कर अठवा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास माले। हे लोक परलो संग सगाई, जद कदम होए रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए ना साके जाले रहाओ, निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक। माद दूध जैसे बाले, सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई। नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई। गृह बाहर ठाकुर भगतन का हराबर या सर्वठाई रखाओ। ताको कोई ना पहुंचे नकारा, जाके अंग कुसवाई। जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम त्याई। तनाश्री महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूर्णवंत अभमानी। राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त। अपना बल नहीं हारे रहाओ, आन त्याग पै इक आसर। शरण शरण कर आए संत अनुग्रह, पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए। तनाश्री महला पंजवा जा को हारंग लागो इस जुग में, तो कई अत गए सूरा। आत्म जिने सगल वसता के, जा का सदगुर पूरा। ठाकुर गाई गए आत्म रंग।

करे निर्बन जानत दूर तुमे प्रवनेर उद ताके उद ते उद पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नहीं मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवां नाम गुरदी हो अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में धर्मा जन को नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पद जन की माने जो जो होग रहाओ। नाम धन जि जन के पाले सोई पूरा साहा नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवां नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे।

गए प्रव्यापने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ चूड़ निंद ए भी करत गुदारी मृत सिंह आस मिथ्या मीठी ए टेक मने साधारी सागत की आवरदा जाए बिरतारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़ अंध नानक प्रकाड साध जना संगारी तनासरी महला पंजवा सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी।

सास सास पर पाले प्रसू लाग रहे हो मेरा चीत आद अन प्रसदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ मन बिलाल पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैजर।

जाम रहाव सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपन निट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोबिंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मेहमाना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे फिर साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोख होवे गुरबजनी प्रसन्न लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिते कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूर्ण काम तनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार अरहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मार।

घर सेवा। चरण कमल जाका मन रापै, तोग अगन तिस जन ना व्यापै। सागर तरिया साधु संगे, निरपो नाम जपो हर रंगे। पर तन दोख के पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ सरनाई। तन्हा श्री महला पंजवा। तृप्त भई सज भोजन खाया, मन तरसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रखाओ। अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए, अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ आस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण त्याया, हर सुख निधान

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुध बनता।

ला पहला फिर संगम उठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखेड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती अवगुण भय भय रोसी।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

सुभाय सहज गुण गाइए जीओ गुण गाए विसे सदा अनदेन जाय आप साचे भावे अहंकार होमे तदे माया सहज नाम समावे आप करता।

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक महे तराया, पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नान सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोय निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे तगर तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार नाम अमोल जियो, नित जपे तेरे दास पुरख अतोल जियो, संत रसन रूठा आप तूठा हर से सही मातया, गुर चरण लागे महापागे सदा अनदिन जागया, सदा सदा सिमर तब्द स्वामी सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु अमोलई, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरू मर मना जाना, संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सरगरड़ समाना,

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, रहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपज, पाविन भगत नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हरस्यो, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, का जपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे खानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तना

गवारी दुकृत सुकृत थारो करमरी हरहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरश्री स्नान रे उलझन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी काका खा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परम एगा वारी माया पुयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के हर साधु शरण हमाराखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी थाम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तों वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु ना जाने गातमित तेरे मूर्ख मुगद एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुगद सयाना। मेरा मन आलसिया उगलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कब

जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी तेन तुर पाग पुराना। तिन हम चरण सिरे वे खिन खिन जिन घर मीठ लगाना। हर घर कृपा तारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना। जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया। हार रसक रसक फल लागबा माया पुयांग ग्रस्यो है प्राणी। पुर बचनी बिसगर काटबा मेरा मन आराम ना रस लागबा। हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर चाख बार हाउ। तन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु ले उन्मन लागबा। कृष्णा अगन बुरी सात पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए जिन स गुर दर्शना पाएबा। ए दूजे पाए पवे गर्भ जोनी ता बिरथा जन्म तिन जायबा। हर द्यो बिमल मत गुर सत पग सेवै हम अगर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण सत पग मांगे हर होए दयाल दिवाएबा। जैत सरी महला चौथा जिन हर हिरदय नाम ना बस्यो तिन माद की जे हर बन जा। तिन सुनी दे फिरे बिन नावे ओए खाब खा मोए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रोतारी गुर ज्ञान दियो मन समझा। अरहाओ हर कीर्त कालजुग पद उत्तम हर पाई गे सतगुर माजा। ओम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन सद मिलो वडभागी सब केलबख गए गवाजा। सतगुर साहु पाया वडदाना हर किए बहुगुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन हर उरतारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जैत सरी महला चौथा सत्संगत साध पाई वडभागी मन चल तो पयो अरूड़ा। अनहत तुन वाजे नित वाजे हर अमृत तारस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरे मन तन प्रीत लगाई सतगुर हर मिले उलाए च पीड़ा। अरहाओ सागत बंद पय है माया दिख संचय लाए ज पीड़ा। हर के अर्थ खर्च न साक है जमकाल सह सिर पीड़ा। तेन हर अर्थ श्री लगाया गुर साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। पलत पलत हर शोभा पावे हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध पुर मिल साधु पा खान हर ओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर घर सिमरो अगम अपारा जे सिमरत दुख मिटे हमारा। हर घर सतगुर पुरख मिलावो गुर मिले सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे हर घर नाम रखो उर तारे। हर घर अमृत भजन सुनावो गुर मिले प्रकट होई राम। मसूदन घर माधो प्राणा मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर घर दया करो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर घर नाम सदा सुखदाता हर के रंग मेरा मन राता। हर घर महापुरख गुर मिलो गुर नानक नाम सुख होई राम। जैत सरी महला चौथा हर घर नाम जपाह गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर घर भगत रिड़ाभो।

आपे सदगुर समुंद मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर घर पगदड़ी मन पाई, हर घर नाम ओ महाराम, आपे वरदाना वरसह, गुरमुख पूंजी नाम सहा, हर घर दाद करो प्रभावे, गुण नानक नाम ओ महाराम, जैत श्री महला चौथा, मेल ससंगत संग गोराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर घर कृपा तार मधुसूदन, मेल ससंग ओ महाराम, हर गुण बाणी सरम सुनाहा, हर कृपा सदगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपो महाराम, तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा, हर घर नाम ना पुजे पुजाहा, हर घर अतुल तोल अदपारी, गुरमत जपो महाराम, तब कर्म तर्म घर नाम जपाहा, किलविख मैल पाव तो वाहा, दीन दयाल हो जने ऊपर, जो नानक नाम ओ महाराम, जैत श्री महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहा जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत रखाओ, माल पिता बनता सुध बंधव, इष्ट मीत यार पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सगाई, मुक्त माल तनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बेगानी अवधे, ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ असव पमन तेज, तनी भूमन चतुरांगा, अंगना चल्यो इन मैं कछुए, ऊर सिधायो नांगा, हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाइये, नानकी हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाइये, जैत श्री महला पंजवा, घर तीजा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो, विष्णु भई मैं बोबद सुनते, कहो सुहागन सही यो रगाओ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सा महियो, वरना दी से तेन लखिए, सुहागन सात बुझियो, सर्व निवासी कड़कड़वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहे तो सुनो रे लोगा, संतरसन को बसहियो, जैत श्री

क्याहो सोई सोई पावो, आशा मनसा पूरव जब प्रभ कहो। गुर प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरव, पुज प्रभ कहो। जैत सरी महला पंजवां, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कर कर तसे बसेरा। अरहाव दुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना काहू बेरा, नाम जगत कोड़ सूर उजारा, बिरसे परम अंधेरा। थान थनंतर सब नहीं जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, जिस भौर न होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवां, कार चौथा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आव मैं, सुख पायो गुर आग, तजी स्यान बचिंत सारी, अंग छोड़े हो त्याग। रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो, तो शरण परयो गुर भाग, कर कृपा टहल हर लायो, तो जब छोड़ी मोहरी लाग। तेरे सागर पावक को, जो संत फेटे वड भाग, जन नानक सर्व सो पाए, मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवां, मन में सतगुर ध्यान करा, त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभु जीव माया करा। रहाओ काल जल अरमा जंजाला, छुड़के जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करना पत, कयो चरण आसरा। नाव रूप पयो सत संग, अंध पार परा, आप्यो पियो गातियो परमा, को नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवां, जाको पय गोविंद सहाई, दुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको व्याद न काई। रहाओ दिसे सब संग, रह अलेपा न व्यापे उन्माई, एक रंग तत के बेते, सदगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की, से ही संत सुपाई, तिनके संग नानक निस्तरी है, जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी

जिस बिसरत तन पसम होए, कहते सा प्रेत खिन गिर में बसन ना देवगी, जिस सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया, सो कार्ज केत जैसा बीजे सो लुणे, तर्म यो खेत अकिरत कणा हर विस्तरिया, जोनी परमहेत सलोक कोट दान स्नानंग, अनक शोधन पवित्रत उचरंत नानक हर हर रसना, सर्व पाप विमुचते ईदन की तो मूकणा, ओरी दतीम पाहे मन वसंदरो सच सहो, नानक हब्बे डुखड़े उलाहे पौड़ी, कोट अगा सब नास होए, सिमर तर नाओ मन चिंदे फल पाईए, हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटिए, निचल साथाओ पूर्व होवे लिखिया हर चरण समाओ, कर कृपा प्रव राख लेहो नानक बल जाओ, श्लोक गृह रचना अपारंग मन बिलास स्वादंग रस, कंदाच ने स्मरंत नानक ते जंत दिष्टा क्रिम, मुझ अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत नेह, तो साई जय विसर नानक सो तन खेहे पौड़ी, सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानद इशनाए विसूरे, तो प्रचेतन आवई विष्टा के कीरे, बिन हर नाम ना सांत होए किर बिद मन तीरे, श्लोक चरण कमल बिरह खोजंत बैरागी दह दिस, त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग में, मन साई मुख उचरा वत्ता हब्बे लो, नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी, बस्ता टूटी चुंपड़ी तीर सब छिन्ना, जातना पदना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मित्र ना इड़तन रूपहीन किज साक ना सिन्ना, राजा सगली सिट का हर नाम मन पिन्ना, तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभोए सो प्रसन्ना, श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं, रचंत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया, सुपने हाबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो, नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी, सुपने से तीचित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पखलाया, आर जा गई वेहाय तंदे ताया, पूर्ण पय ना काम मोया माया, क्या वे चारा जंत जा आप पुराया, श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण, कौतक कोड़ तमास चेतन आवस नाओ, नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी, महापयान उद्यान नगर कर मानिया, चूड़ समगरी पेख सद कर जानिया।

श्लोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई।

प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बार बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर घर टेक टोडी महला पंजवा हर घर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी कीनी आप रखाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईगे माया रच बंद हारे चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवां हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संच्यो जिद भूख तसायो अमृत नाम तुसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया टोडी महला पंजवां हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ वड्डे पा गुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जाद घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह में आया टोडी महला पंजवा हर चौथा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद रूड़ो महा रंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए रहाओ हाउ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुर मिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माते एबद नानक हर नयन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाक्यो रे रहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गाथ वाउ सुन लुबड़ो ने पगड़ो पाए संजोयो रे सुन मन सीख सब जन सगलो थारे सगले प्राशित मिट्यो रे जाको लैणो महराज री गाठड़ियो जर नानक गर्भास ना पौड़े रे टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुए हर अंग पीन पेख्यो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे पतीन तेसी को ग्रसो

दय दिस रब रहा जिस तुमर अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जिस गावे करते ते जन कभो ना मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत पो इस जी के फिर हर नानक जाने कूर टोडी मुहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एक न रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रखाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुखदाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा फेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजयो कोड़ सूर नान पर

जप मन राम नाम निस्तार कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे हर पव जिल पार उतारा रखाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निगट बस कछ नजर न आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे सहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे तो सहो सचा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान हर अंत शिडामन हारा जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा ते पाएगे हर जप नानक नाम अधारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर हर नाम नित ध्याय जो इच्छे सोई फल पावे।

मनहार अगम अगाध ऊच अपार जो तो सेवै तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद अनूप सेमर सेमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त होए जिन जपया तिस कौ बलिहार तिस कै संग तरे संस

राम सुमावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुरसिख आए मिल।

जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तेन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले, ओए जप जा प्यारा जीवंदे हर नाम समाले, जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कौ कुम जाया, ओए आशटे परवार सिउ सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेवया गुर तन गुर तन्नो, गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो, जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन पराणी, जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी, गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया,

निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औध विहात है, फूटे कर्जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, अजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो। कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रखाओ। माग पिता सुध बंद जा हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना। जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो। तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है। कयो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रह तन राश्यो आत्मनिहो लगायो। काल फास जब गल परी।

अमीन तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

सदगुर प्रसाद अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत छोड़ ताहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब को ही रवे, बंधन बंधया सब जा।

दुख विसारसी सहसा मूले नाहे तर पर तारसी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाव देवै दिखिया चल है सतगुर पाए पवे ना पीखिया जा को मैल हजूर दूजे निवे किस तर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस छुट्टे ताके बोल साहेब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मते कोए कहे उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत पावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी ए द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अगे पाए सी जेहे कर्म कुमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाव आप वरताए सी।

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे

कामना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही मोहल्ला पहला कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाय जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दिष्ट कर समसर जाने योगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे धावत वर्ज रहाई है निज चरे सह तुन लाग कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुग तिव पाई है नानक जीव त्या मर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाज तौ निरभो पल पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई।

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करो जे किश कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वडियाई हो आख ना साका हो मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक तौहर बख्स लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सांक

लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता। नानक की अरदास सुनीजे दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे। सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए। तिस जान कर्म प्राप्त होए। सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये। रखाओ एक बिना दूजा नहीं जाने। घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने। जो किछ करे सोई फल मानै।

गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन मह परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उधरे हर गुर शरणाई।

प्रेम शोहा करत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई, अनक जन्म बीतियन फरमाई, तर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन संत जन पाई, चरण सरण नानक गद पाई, अराग सूही

अवधूता तेन पी अंत न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन।

तेरी बख्श निराली जी जनसा तेरे कीते घड़ घड़ तुई त्याई है तेरी गत मित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुगद अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग चढ़े घर संत तुम्हारे जिन कर तन घर नामा प्रवान गणी सही ए आए सबल तिना के कामा मेरे राम हर जन के हो बल जाई केसा का कर चबर ठोलावा।

बिन गुर गुण ना सुमावनी बलराम जियो, गुण सार न जानी परम फुलाणी, जोबन बाद गवाया वार कार दार दर्शन नहीं जाता, तिरका सहज ना पाया सदगुर पूछ ना मार।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानण

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल,

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड़ भागी पाई है।

हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पो भागा हर भेटिया एक मो

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर्म नवनिध परे भंडारा।

बिनवंत नानक इश पुन्नी पेख दर्शन जीजे राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हौ सम्मल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले काड़काड़ वासी सर्ब निवासी नेरेगी ते नेरा नानक दास सदा शरणागत।

सच रते से निर्मले होमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बरिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है

पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सत फुरमान सदा निचल रब रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आप युगम चलाएगा जगतंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैद ओ मन तामद गुर ठाक रखाया नावे नू सब लोच दी गुरमती पाया तुर लिखया मेट न सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदे हटनाले जेते जीते ते वनजारे खुले हट होआ व्यापार जो पहुंचे सो चलन हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा परवान कर आए वजी वाधाई सच नाम की मिली वड़ियाई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा सेवन दियो बग्गा तपे कणा कालिया काले वन अंधे अगली बारे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बारे तबे न पावे मान पौड़ी काया कोटर तय हर सच्चे आपे एक दूजे पाए खुवायन होमे विच व्यापे इहो मानस जन्म दुलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल अरचायोन।

अंतर आत्मे जो मिले मिलिया कई गे सोए पौड़ी हर घर नाम सलाई है सत्कार कमावे दूजी कारे लग्या फिर जूनी पावे नाम रत्या नाम पाईए नामे गुण गावे गुर के शब्द सलाई है हर नाम समावे सदगुर सेवा सफल है सेवे फल पावे श्लोक महला दूज किस ही कोई कोए मन निमाणी एक तू क्यों ना मरीजे रोए जा लग चेतन आव ही महला दूज जा सुगता सौरावियो दुख पी समालियोए नानक कैसे आणिए क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हों क्या सारा ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लय मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सुखाई जो तेरी शरणागति इन लय छिड़ाई।

तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम न जप हो कमर मत लागे मर जैबे कहो क्या करो अपागे रहाओ दोसु करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया।

कहे रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की ताटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रखाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूद पूद कर पागी। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कै छूटिया। राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बाबल होई सो सो लोरो। तैसे मन में की आरोस, मुझ अवगुन सेना ही दोष। तै साहेब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछे पछतानी। रखाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरहे जाली। पिरहे बिहून कत सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रसाद संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली। वाट हमारी खरी उड़ीनी, खन्यो तिखी बहुत पेईनी। उस ऊपर गए मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। सूही ललत बेड़ा बंद न सक्यो, बंधन की वेला। पार सरवर जब उछले ताब तरण दुहेला। हथ नराए कुसुम्बड़े जल जासी ठोला। अरहाओ एक आपी ने पातली, सह केरे बोला। दुद्धा थनी न आवई, फिर होए न मेला।

ओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौब दे कर पहला तू सुल्तान कहाओ मियां तेरी कौन वडाई जो तू दे सुका स्वामी मैं मूर्ख कहण न जाई तेरे गुण गावा दे बुझाई जैसे सच मैं रहो रजाई रहाओ जो किश होवा सब की तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहेब मैं अंधले कचत।

जे बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइए घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा वित्यासा हुए निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पाभो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा शेर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

लेना उपाया, हर का मंदिर तस्मय लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पई निहाल, जिन त्याकै तस आया साध, ज्यों गूंगा मन में बिस्मात, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, बिघन न लागे।

मुए अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मुए निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सदगी मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन

तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रामंगन, तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रखाओ, आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मतब सुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई, नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिरावल महला पंजवा, माद पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे रखाओ, तिखा पूख बो तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरा वड भागी पाइये, मिल साधु हर नाम ते आइये, पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे पज गुर के चरना रखाओ, आवर कर्म सब लोका चार, मिल साधु संग हुए उधार।

ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजे जो बालू कर बार बिनसत बार ना लग गई जो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सद देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए कारबार रहाओ। जैसा सुबना रैन का तैसा संसार दृढ़ मान सा बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वडियाईया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो। लपत रहो मन बसना गुर मिल ए त्याग हो रगाओ करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो। अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो पंच संग गुरते छुटे दोह अर रागो हृदय प्रकाश प्रगट पया निसबा सर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिर पाया मन तन सीत लागो।

और सुर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद कूलो मानो खजान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टे, क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एह, प्राप तज रचे जे आन सो सो रलिगे खे हे रघाओ, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेह, जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुण तास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न मिलसे न छोड़ जाए,

अंध कुब मैं गलत थे ताडे देखा थे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुखी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिरसे त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कान समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सद बल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रवते पाओ दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रगाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम यो कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़या प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सखाई जन्म मरण दुख काटया तो का थान पाया काटी सिलक प्रमोह की अपने प्राप्त आया मत कोई जानो अवर

आई। केल उत्तरे शुद्ध होए साधु शरणाई, सोनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बिलाई। महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई, बलावल महला पंजवा पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत। नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत, गुरपुरा जिसे फिटिया ताके सुख परवेश।

राम नाम तन संचय जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभु तेरिया प्रभु की वडियाई, नानक अंत ना पाईए बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा, सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पैरास, करतारपुर करता वसै संतन के पास रखाओ। बिघन न को लागता गुर पै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। तोट न आवे कदे मूल पूर्ण पंडार, चरण कवन मन तन बसे प्रभ पगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन ना दिस, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीश। जय जयकार सभे करे सजथान सोहय, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, हर हर हर आराधिये होई गई आरोग। रामचंद की लश्त का जिन मारिया रोग, रघाव गुर पूरा हर जापिए नित कीचे भोग। साध संगत कै वारणे मिलया संयोग, जे सिमरत सुख पाईए

आवई गुर सिख प्यारे रहाओ, करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रसरणागति।

प्रमिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त तुग सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रघाओ। पलट पए संसार में फिरते पए नाम। नांग ते शरणागति काट कड़ सब जान। बिलावल मोहल्ला पंजवा रोग मिटाया आव प्रभ। उपजया सुख सांत वड प्रताप अजज रूप। हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी। रखिया मेरा भाई हम।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रामंग है संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किलवख दहे निरपो होए पजो जगदीश इो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काट कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिखारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

तेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

मूल नसो प्रीत बने अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को आकत कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रबो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रघाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बेलावल मोहल्ला पनवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखिया राता स्वान जैसे। औद विहावत अदक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख नरंजन, साधु संग तरमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, कहो नानक गुरपुरा फिट्यो आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे, ता मेरी आस पुन्नी रखाओ। पीर गई बंदी मन तीरा मोयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्राप्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे तिमरे अनक मुनि, अंध ले टेक नेर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी, राग बिलावल महला पंजवां कर तेरवां पड़ताल।

सरण सुहागन चरण शीश धार, लालन मोहे मिलावो ताप कर आवेरी। सुनो सहेरी मिलन बात कहो, सगरो अंग मिटावो तो कर ही लालन पावो। तरस मंगल गुण गावो, आनंद रूप त्यावो, नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायोरी। मोहन रूप दिखावे आ मोहे नींद सुहावे, ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी। मीठी तरह कहानी मोहन लालन पायोरी, अरहाओ दूजा बिलावन महला पंजवा। मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे, राचो नाथ की सहाई संतना। आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना, भावे चरणावे चरणावे। उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो, आनस नहीं चाहे एक हर लाहे। अन ते टूटी है रिख ते छूटी है, मान हरस कूटी है, संग साधु उल्टी है। अन नाही नाही रे, नानक प्रीत चरण चरण हे। राग बिलावल महला नावा, दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद दुखरता हर नाम पछानो, अजामल गण का जे सिमरत मुक्त पय जी जानो। रघाव गज की त्रास मिट्टी छिन्हू मैं, जग ही राम बखानो। नारद कैत सुंद त्रु बारक, भजन माए लबटानो। अचल अमर निरपय पद पायो, जगत जाए है रानो। नानक कैत भगत रशक हर, निकट ताए तुम मानो। बिलावल महला नामा, हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नहीं चूके।

आप ना बूझे लोक बजावे, मन का अंधा अंध कुमावे, तार कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेव गे अंतर जामी, कट कट अंतर जिकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पै नामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने। गुरमुख नाम सदा सदा वखाने, सदगुर सेवे दूजी दुरमत जाई। औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई। सदगुर मिले वड्डी वडियाई, दुख काट हिरदे नाम साई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मुख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां

तृतीय ब्रह्मा विष्णु महेशा देवी देवे उपाए वेसा ज्योति जाति गणतन आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ उपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी पेदा अष्ट दिशा खड़ तीन उपाय तो बूझे जिस आप बुझाए तीन समावे चौथे वासा परमत नानक अमता के दासा पंचमी पंच पूत बेताला आप अगोचर पुरख निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाख सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दार कर साचे देख हदूर झूठे को नाही पदनाओ तब न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी पर में मुक्त न होए तौ छूटे जा खदम छिड़ाए गुरमत मेले भगत दरड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रसाजे अनहद शब्द निराला वाजे जे प्रप हावे ता महल बुलावे सब दे फेदे तौ पद पावे तार कर वेश खपे लै जावे साचे साचे साच समावे सप्तमी ससंतोख शरीर सास मुंद परे निर्मल नीर मजन शील सजर दे विचार गुर के शब्द पावे सा पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अठ सिद्ध बुद्ध साधे सच ने केवल कर्म आराधे पौन पानी अग्नि बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ तिसमय मनुआ रहा लिव लाए परुणत नानक काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कड़ कड़ नाथ महाबलवंडा आई

आर सच्चा न्याय कूड़ यारा के मोह फिटकी है, सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याय है, सिर निंदक शाई जन नानक सच आरा दया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्राबक्ष करे उपावा सिर उपाऊ है, नाव प्राप्त होए अंदर शीतल शांत है, हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान, सुखदाता तेरे मन वसे होमे जाए अभिमान।

ताकि कछु न का नीरे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बड़ा नीरे हर के सेवक जो हर पाए इनकी कथा निरारी रे आवे ना जाए ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे कैद कबीर सुनो रे संतो मिल गए सार्ग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप ना बौरा राम कियो बौरा सदगुरु जार गयो प्रमोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अभे ना माता तो कहो ना माता कहे कबीर रामे रंग राता बिलावल ग्रेव तज बानखण जाइए क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भजल निध पारी।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी बलावल, नेत उट कोरी गागर आने, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटेओ, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपुते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी, सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडगे खोए, यो मुंडिया क्यो नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुर राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरेओ, करके देव किदर की छोडी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरेओ बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर शाजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, ए

सुख अंतर सांत शीतल माने अपना। जैसे सगत सूरबो जलता गुर सद देखे ले जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहां कहां तुझे राखे सब ठाई सु ऐसा प्रभु सेव सदा तू अपना रखाओ। जावे सब निधान तू हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना। जिन घर त्याया तिन घर पाया मेरा स्वामी। इनके चरण मलो हर दसना शब्द पछाण आराम रस पावो। ओ उत्तम संत पयो बड़ बड़ना ते जनकी वड्याई घर आ वधाई। ओ कटे ना किसे दी कटाई एक तेल तेल तेल ना। जेते सो पावे मन मेरे सो सत्य आए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजे नित बसे हृदय हरी मुझ चरना। गोंड महला चौथा जितने सहा पात सा उमरा सिकदार चौधरी। सा मिथ्या झूठ पाओ दूजा जान हर अविनाशी सा थिर निचल। इस मेरे मन पज प्रवान मेरे मन नाम हरी पज सदा दीबान। जो हर मैल पावे गुर बचनी ते जीवड़ अवर नहीं किसे दा तान रखाओ। जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसह मन मेरे सा बिन सजाहे जो रंग कसुंभक चाण। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो घर त्यावे सो प्रधान ज्यो चंदन निकट वसे हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत मिल पद प्रवान ओ सब ते ऊंचा सब ते सूचा। जाक हिरदे वसिया भगवान जन नानक तिसके चरण पखाले। जो हर जन नीच जात सेवकान गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब ते वर्त। जिहार कराए एहा को करिए तो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे। जो तुद नु सब दू रख लईए मेरे मान हर जप हर नित पढ़ाइए। हर बिन को मार जीवाल न साके ता मेरे मन कायत कड़ाइए रखाओ। हर प्रपंच किया सब करते विद्या पे अपनी जोत तरहिये। हर एक को बोले घर एक बोलाए गुर पूरे घर एक दिखाइए। हर अंतर नाले बार नाले तोत पासो मन क्या चोरइये। नेक कपट सेवा कीजे घर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पईये। जिदे वस सब किश तो सब दू वड्डा तो मेरे मन सदा त्याइये। जन नानक सो हर नाल है तेरे हर सदा त्याए तू तुद लय छडइये। गोंड महला चौथा हर दर्शन को मेरा।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

राम लिवलाय, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवार, उचरत राम भय पार उतार, सबते ऊंच राम।

लूट लेहे सागत पद खोवे साध जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए ओत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है।

संत जपे गुर दियो भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल तान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे परवाहे।

सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कह ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े भूभत राजे हैं सिद्धे सुहागन उर्वा

सदगुर सेव सुख होई, जो इच्छा सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई रखाओ, काचे पांडे सा जने वाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई, मान तन थाप किया सब अपना, एहु आवन जाना, जिन दिया सो चितन आवे, मोए अंध लपटाना, जिन किया सोई प्रव जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा, राम कली महला पंजवा, पवो चरना तल ऊपर आव हो, ऐसी सेव कमाव हो, आपस ते ऊपर सब जान हो, तो दर गए सुख पाव हो, संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर दे पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख बाणी रखाओ, परपंच छोड़ सहज कर बैस हो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवे निध पाव हो, इनमे तत बलोई, परम चुकाव हो, गुरमुख लिवलाव हो, आत्म चीन हो पाई, निट कर जान हो, सदा प्रभ हाजर, केस्यो करो बुराई, सतगुर मिले मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी, तन तन से जन, जिनी कल मैं घर पाया, जन नानक सतगुरबानी, राम कली महला पंजवा, आवत हरखना जावत दुखा, नै व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल वियोगनी, हे बिदगए मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर्ष भोगनी रखाओ, सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, प्यार पवित्र अलोगनी, आज्ञाकारी सदा सो पुंचे, जात कद पेखो हर गुनी, नए सिर सकती जल नहीं पवना, ते आकार नहीं मेदनी, तगुर जो का था निवासा, जे अवगत नाथ अगमतनी, तान मन हर का तान सब हर का, हर के गुण हो क्या गनी, कहो नानक हम तो गुर खोई है, अम्बे अम्ब में लोगनी, राम कली महला पंजवा, त्रैगुण रहत रह नरारी, साधक सिद्ध न जाने, रदन कोठड़ी अम्ब

तुम मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सगुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहा, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बांसरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सा सीगारी रघाओ, आखार मंडली तरण सवाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पन्म चूला करत अकेला, जल ते ऊपत हुआ, पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पं संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद खावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

गर्भ है परया, जप नाथ दिन रहनाई, तेरी खिंता दो दिहाई, रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी, मेरी तेरी मुंद्रा ताई, मांगे टूका तृप्त ना पावे, नाद छोड़ जाचे लाज न आवे, क्याल चित जोगी आसन तेरा, सिंगी वाजे नित उदासेरा, गुर गुर कीते बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसन हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंता नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपया नाथ दिन रहनाई, हुन पाया गुर गोसाई, रहाओ दूजा राम कली महला पनवा, करन करा मन सोई आना दिसे कोई, ठाकुर मेरा सूड सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, ऐसो रे घर समीठा, गुरमुख किने विरले डीठा, रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम, पीवत अमर पय ने काम, तन मन शीतल अग्नि निवारी, अंधरू प्रगटे संसारी, क्या देवो जा सब कुछ तेरा, सब बलिहार जाओ लख बेरा, तन मन जियो पिंड दे साजिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल किवारा महल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पड़दा टूटा, हौ तेरा तू मैं मन मूठा, राम कली महला पंजवा, सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर कहो सद बलिहारी, ताज मारे पूरे सदगुर, बाजे अनघ तूरे सदगुर, रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर, होए निहार देज तीर, जाके बंधन काटे राय, सो नर भौर न जो नी पाए, जाके अंतर पलट्यो आप, ताको नाही दुख संताप, ला रतन से पाले परया, सगल कुटम ओ जन ले तरया, ना जो परमना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जल का देखो आप दया।

अहंकारी, संग नाही रे सगल पसारी, सोग हरख मैं दे बिरधानी, सागत ए भी करत बेगानी, हर का नाम अमृत कल माघे।

चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था संचे माए, बिरध पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुग्ध ते बुरी, जिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो नानक जग अंध।

अंत की बार ऊठ सिधारे ना बिना सब चूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संगराते ते समाया मूठ परानी रखाओ तीर्थ नाये न उतर समायल कर्म धर्म सब हो में फैल लोक बिचारे गत नहीं होए ना बिहूने चल सहे रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सो दे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपे आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे रख हो आप सगल सुखा प्र तुम रे हाथ जित लाभ तित लागे स्वामी नानक साहेब अंतर जामी राम कली महला पंजवा जो कुछ करे तो ही सुख जाना मन असमझ सा संगपति आना डोलन ते चूका ठहराया सत महे ले सत समाया दू गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन में मानी महापुरख का संग पया रहाओ सगल पवित्र सर्व निर्मला जो वरताए सोई पला जय राखे सोई मुक्त स्थान जो जपाए सोई नाम अड़सठ तीर्थ जय साध भगत धर है तह बैकुंठ जय नाम उच्चर है सर्व आनंद जब दर्शन पाईए राम गुणा नित नित हर गाएगे।

रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रस गुरमुख नाम निमक हृदय बस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन न जाई रखाव तोर वीर तीर्ज मद पूरा तेज समाद तुन गैर गभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दिवसे हर नाम सगल सुख आनंद आरोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए न जाए डोले कत नाही जा के नाम बसे मन माही दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उत्तर।

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होए निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन घर भगत नहीं छुटकारा, सुहर भजन साध कै संग, मन तन रापे हर कै रंग, तोड सियाणप बहु चतराई, मन बिरहर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर घर नानक टेक टकाई, राम करी महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्य हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत

अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्त करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह नाम

आनंद न हो वी सोग, कहू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, विषम विषम पय विषमादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग। देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए।

सच सहज सुख पावे मीत, थाय मेरा अत पारा, किन में था प्यो था पनहारा, जिबन अवर न कोई, जनका राखा सोई, तार कृपा अरदास सुनीजे, अपने सेवक को दर्शन दीजे, नानक जापी जप जाप सब ते ऊच

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सब गुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा तो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया तिर पवन जो दिखाई सत्य तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी काड़ काड़ किंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सुखाई राम कली महला पहला औ हठ हस मड़ी करशाया तारण गगन कल तारी गुरम केती शब्द उधारी संतो रखाओ ममता मार ओ में सुख तिर पवन जो तुम्हारी मनसा मार मने मैं राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाहद वाजे हड़कड़ जोत तुम्हारी पर पांच बेण तई मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पांच तत् मिल ऐरस दीव निर्मल जो त्योपारी रस लौके इव तन किंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी मैं आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी इव मन राजा पांच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कहे बपरे जीव तुआ मन मारी ब्रह्मा विष्ण महेश एक मूर्त आपे करता कारी ताया सो तरे पवसागर आत्म तत् विचारी गुर सेवा ते सदा सो पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वर्त एहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हृदय एक मोरारी मनवा अस्थिर शब्द राता एहा करणी सारी वेद बादरा पाखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जो कुमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदु जो जुत विचारी माया मोह भवजल है अवधु सब तरे कुलतारी सब सूरज उचारे औदु बाणी भगत विचारी यो मन माया मोहया औदु निरसे शब्द विचारी आपे बगसे मेल मिलाए नानक शरण तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंसा कर तू दया आमन जान विपूत लाए जोगी ता तीर पवन जिन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे हर सिंह रहे लिवलाए रहाओ संतोख पद कर चोली जोगी अमृत नाम भुगत पाई ज्ञान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मैं मंगन चढ़े जोगी ता ना पल्ले पाई इत किंगरी ध्यान लागे जोगी ना सच पल्ले पाई इत किंगरी साधन आवे जोगी अवमाना विचो जाई पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी यो शरीर का डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन बेद तिशना खंडी हुकम बूझे तो जोगी कहिए एक सोचित लाए सहसा टूटे निर्मल होए जो जुत इव पाए नदरी आमदा सब कुछ बिन से हर से तीच दलाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एसो जी पाए यो जोग ना होवे जोगी जे कुटम छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्राप्त लह यो जगत मिट्टी का

ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता, आपे बक्स पंडारी। इस क्या गुणा का अंत न पाया, हौ गामा शब्द विचारी, हरजू जपी हरजू सालाही, विचो आप निवारी, ना पदार्थ गुर ते पाया, अखुट सते पंडारी। अपने आप भगता नु आपे तुठा, अपनी कृपा कर कलतारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी। गामन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश वे तुका, आखण बिगम बिचारी, शब्द लगे सही जन इस तरे, भोजल पार उतारी। बिन घर साचे को पार न पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखया सो ही पाया, मिर हार शब्द सवारी। ताया कंचन शब्द राती, साचे नाए प्यारी, ताया अमृत रही पर पूरे, पाएगे शब्द विचारी, जो प्र खोजे सही पावे, और फूट मुए अंकारी। बादी बिन से सेप सेवे, गुर के हेत प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे, हमे तिस नाम मारी, सगुर दाता तने पिछाता, जिसनु कृपा तुम्हारी, सगुर ना सेव है माया लागे, डूब मुए अंकारी। जिचर अंदर सास चित्र सेवा की जय, जाए मिल गए राम मुरारी, अन दिन जागत रहे दिन राती, आपने प्रेपीत प्यारी, तन मनवारी वार कुमाई, अपने गुरबिटो बलिहारी, माया मोह बिन सजाएगा, उबरे शब्द विचारी, आज गाए सही जागे, गुर के शब्द विचारी, नानक सही मुए जे नाम ना चेत, फल जीवे विचारी, राम करी मोहल्ला तीजा, नाम खजाना गुर ते पाया, तृप्त रहे आगाई। संतो गुरमुख मुक्त गल पाई, एक नाम से आकट अंतर, पूरे की वडियाई। रखाव आपे करता आपे पुता, देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो करया, अवर न करना जाई। आपे साजे सिर चुपाए, सिर सिर कंधे लाई, जिस सिरे भो ता सुख पाव, सतगुर मेल मलाई। अपना आप आप उपाए, अलख न रखना जाई, आपे मार जी वाले आपे, जिसनु तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, छेबड़ पागी जिनी एक को जाता, सत्य रहे समाई। आप स्वरूप से आना आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख पाए अंतर, आपे परम फुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरे लोकाई, जिनी चाखिया तिना साल आया, सगुर बूझ बुझाई। एक ना ना वो आप फुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा साला है हो संतो, जिदी वड्डी वडे आई। जिसमे अवर न कोई राजा, करत पावस बंट मनाई, न्याओ तसे का है सा साचा, विरले हु मनाई। इसनु प्राणी सदा त्याव हो, जिन गुरमुख बंट बनाई, सगुर पेटे सोजन सीजे, जिस हृदय नाम साई। सचा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्मात, मेरा प्रभ रविया सर्वथाई। राम कली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, किन्ही किया प्रवृत्त पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे, आ ना जा ना वेसा, रहाओ किन्ही ग्रियो तय बणखण पाया, किन्ही मोन अधू सदाया, होई कहतो आनन पहोती, मोहे दीन हर हर ओढ़ लीती, किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन तज पया उदासी, किन्ही पौन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कया मैं कुले बड़े आई, किन्ही कया बाब उपाई, कोई कहे मैं तरे पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर चाया, किन्ही सिद्ध बो चेटक लाए, किन्ही पीघ बो थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बो खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहस्यो मंडत, कोई करे आचार सुपरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोधे, बिन नावे ओ मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साह संग पाया, बूझी तिसना महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी पे जिंतु करया, माटी काले दिहोरा करया, उगत जोत ले सुरत परीखया, माद गर्भ में जिंतु राखया, राखन हार समार जना, सगले छोड़ बीचार मना रहाव, जिन दिए तुद बाव महतारी, जिन दिए प्राद पुतहारी।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नी सीजे, कारज सबरे मन प्रव त्याई जे, ईगा ऊगा एक ओही, जद का देखिए तत तत ओही, ते सेवत मन आरस करे, जिस विसरे एक निमख न सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना के सेवा ना करु मारे, गुर बोहे थवड भागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली मोहल्ला पंजवा, ताउ बिहावे रंग रस रूप, ताउ बिहावे माए बापूत, ताउ बिहावे राज मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम अधारा, रचना साज बनी

राख लिगे भगत जना अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एक नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आ मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम, शांत प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीशरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्वजिया प्रतपाल जियो। श्लोक तदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओड कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पया वड पागी हो ग्रे पलटे प्रव आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमन रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए।

ज्ञान ने तीर्थ नहाइए तो फल पाइए मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोल जोग जुगत विदसाई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टेकई नानक पूख न जाई हाड पटन कर गुरु दिखाया है जे सच वापारो खंडत निंद्रा अल्प आहारं नानक तत् विचारो दर्शन पेख करो जो गिंद्रा मुंद्रा चोली खिंता बारह अंतर एक सरेव हो खड़ दर्शन एक पंथा एन

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़।

कारण यो पेख निवासी किस वखर के तुम मन जारे क्यों कर साथ लंगावो पारे गुरमुख खोज पए उदासी दर्शन के ताई पेख निवासी साज वखर के हम मन जारे नानक गुरमुख उतरस पारे केत वेद पुरखा जन्म मटाया ताहे कौ तुझ यो मन लाया केत वेद आसा मन साखाई केत वेद ज्योत निरंतर।

कथियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस शब्द

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कण साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण।

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुटे, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनु बख्से तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सब को कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदन गुण गावे सुख सहज, बिख पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कवावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझे बिचारा, सब कुछ तेरा खेल है, सच सृजनहारा, जिस पावे तिस बख्श लहे, सच शब्द समाई।

पूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परमगत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण, सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन, जिनके चित में परम ते दे दिते नानका, ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद, ताका भूखा होए जिसका भोजन नानका, विरला पाए कोए महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन, जे पढ़ कर भोजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेह करेन, अभ्यागत से ई नानका जी आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन वे सच्चा असराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए, महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच हो में जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल ना होयो परगास, बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विचे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तब आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए, पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए, महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत पंडार, परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार, तेसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबा बंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भगती सीगार कर नित जम्मे हुए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो विच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए विण कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप नेचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू खबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म न बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच्च महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केलक कटन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवड़ दाता नागे किस आग सुनाइए गुर प्रसादी पाए जिथो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आइए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा पाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन सेई कर्म करेन जाए पुछो सिमरत सास्त प्यास सुख नारद बचन सब सृट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए ते सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो चूड़ बोलेन कूड़ कु सत कुमान दे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिनको पोते पुन है तिन वात से पीती नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤੀ ਪਾਪ ਕਰ ਸਤ ਕਮਾਹੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਦੇਵਣ ਜਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਖੱਟੇ ਭਾਉ ਭਾਵੇ ਆਵੋ ਭਾਵੇ ਜਾਓ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ ਆਪੋ ਆਪੇ ਪੂਜਾ ਹੋਏ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਕੈ ਭਏ ਨਿਆਏ ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ ਸੁਣਾਏ ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕੰਨ ਰੇ ਸਮਾਹੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵੇ ਚਾੜੀ ਖਾਹੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂ ਵੇਖੋ ਕੋਏ ਜੋਗੀ ਗਿਰਗੀ ਜਟਾ ਬਿਭੂਤ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਰੋਵੇ ਪੂਤ ਜੋਗ ਨ ਪਾਇਆ ਜੁੱਤ ਗਵਾਈ ਕਿਤ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਕਲਕਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪੇ ਆਖਣੇ ਆਪੇ ਜਾਣ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ ਸੂਜ ਨੇਉ ਪੜਗਲ ਪਾਵੇ ਤੂਤ ਪਾਏ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਤਾ ਤੋਤਾ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਣ ਗੁਰ ਪੀਰੇ ਉਹ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਾਉਦ ਸਾਏ ਉਥੇ ਕੋ ਜਾਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਪਿਸਤ ਨ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਘਰ ਜੁਗਤ ਦਸਾਈ ਤਿਤ ਕਾਰਨ ਕਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਏ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਾਟਾਊ ਈਰੀ ਆਈ ਟਿਲ ਨਾ ਕਾਊ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਫੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਸਭਨਾ ਕਾਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਣੀ ਬਾਜੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਆਖੀਏ ਕਾਇਆ ਕੋੜ ਗੜ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਜਵੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਰ ਨਾਮ ਪੜ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਿਤ ਕੜ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਸਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਸੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰ ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ ਆਪ ਸ਼ਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਾ ਸਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਕਾਉ ਚਰੇ ਜਿਸ ਹਸਿੱਧ ਦੇਵੇ ਜੇ ਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤ ਆਏ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਜਿਸ ਕੜ ਪੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਸਭ ਕੜ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸੇ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੇ ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਵੇ ਕੌਣ ਜਿਸੇ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ ਜਿਸੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੌਣ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਰੋ ਕਰੇ ਜਬ ਤਬ ਸੰਜਮ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ ਬੋਲੇ ਈਸਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਜੋ ਤੂਪੇ ਆਪ ਪੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਸੰਤਾਪ ਅਵਹਠ ਪਟਣ ਮੈਂ ਪੀਖਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਅਵਧੂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਚੜੇ ਬੋਲੇ ਗੋਰਖ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਉਦਾਸੀ ਜੇ ਪਾਲੇ ਉਦਾਸ ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਸ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਡ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਕਾ ਪੜੇ ਨਾ ਕੰਧ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪਾਖੰਡੀ ਜੇ ਕਾਇਆ ਪਖਾਲੇ ਕਾਇਆ ਕੀ ਅਗਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰ ਜਾਲੇ ਉਪਨੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਦੇਈ ਝਰਣਾ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਜਰਾ ਨਾ ਮਰਣਾ ਬੋਲੇ ਚਿਰਪਟ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖਣਾ ਰੂਪ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪੈ ਰਾਗੀ ਜੇ ਉਲਟੇ ਬ੍ਰਹਮ
गगन मंडल में रूपे थम आए निस अंतर रहे ध्यान ते बैरागी सतसुमान बोले परतर सत स्वरूप परम तत् मैं रेखना रूप मुखला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीव है ज्योत कन पड़ाए क्या खाजे पुत आसत नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ तूप शाम जे सम कर सह

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ। जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए रोग सोग दुख वंजे जिस नाऊ मन वसे तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रस है खंड ब्रह्मांड बे।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु जियो पिंड था दिया इसकी पाओ भक्त नहीं साधी रघाओ पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तेन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही दीन दयाल के पाल दमुद्र भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

अब कुंभक पर पुर लीना ते बाजे अनहद बीना भगते बाकल शब्द सुनाया सुनते सुर मन बसाया कर करता उत सपारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोष, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सदगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सा सुनिए, अनपो पाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सहे ना परसे, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नि समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड़ पर आला, आले पीतर ताती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

पितर सब कीए, जे तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रव कह न सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानको दया प्रवतारो, हम सेवो तुम जन पगे, नट मोहल्ला चौथा, मेरे मान जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रतारी, मत गुरमत नाम बने रघाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, केल भग पाप नाम हर काटे, जिव खेत किसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रव जान हो, हम कह न सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रव तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बो बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यो जल कुंचर तनुए बंदेओ, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक प्रवडने, नट मोहल्ला चौथा, मेरे मान कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रतारी, लग सतगुर हर जपने रघाओ, हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर उड़ने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, हे प्रपंच किया प्रस्वामी, साब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल है सरल उठे बहु लहरी, मिल सलल है सलल समणे, जो प्रो किया सो तुम ही जान हो, हम न जानी घर गहने, हम बार्क कहो विपुस्त तारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जलनिध हर मान सरोवर, जो से

प्रसाद हर हर भगत परे पंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनु कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा सुमाली हर हर नाम जपो मेरे जीवड़े जप हर हर नाम छिड़ावे जियो रखाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचे हर देव पसाओ हर सत सत सदा हर सत हर सत मेरे मन पावे जियो नवे शिदर सर्वे अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी हर सिमरत मल ले जावे जियो माया मोह बिख मह पारी क्यों तरगे दुत्तर संसारी सतगुर बोध दे।

दान आए, त्यागो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरो है नामा, कवन बस अंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो,

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन वासना बहुत विस्तारा अहं मेव मूठो बेचार अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई प्रा बिसरत नरक मह पाया तै मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत किरपाल स्वामी तो जन नानक पार गरामी भ्रमत भ्रमत प्रसरणी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

तिसै बूझ जिन तू किया प्रव करण कारण एक रहाओ केत मन में तस्यानप छोड़ सगले भेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवां पत पावन नाम जाकू अनाथ को है नाथ महापौजल माहे तुलहो जाको लिखे ओ मात।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रहाओ। जम को डंड परे सिरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता होत आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागेओ। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागेओ। सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागेओ। मारू अष्टपदियां, महला पहला, कार पहला, एक ओंकार। सदगुर प्रसाद, वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका, अड़सठ तीस बौ कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

गुरपूरे सा वास है, काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वडियाई है, भाणे बक्से पूरा तनी, सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय, गुर को बर जाइए, लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी, साचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या, चित सच्चे वितो सच्चा, साचा राह चाख्या, साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी, अनहत लाला विद्या, प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो, झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया, साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया,

रघाव हे गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सबे सेर आहे निस दात सुमार करे चार पदार्थ लय जग जन्मया शिव शक्ति कर वास तरे लागी भूख माया मुगज जोग मुग्ध पदार्थ मोहे करे कारण पलाव करे नहीं पावे एत उद ढूंढत थाग परे काम क्रो अंकार वे आपे कूड़ कुटां से प्रीत करे खावे पूगे सुन सुन दिख पैर दिखावे काल करे बिन गुरु शब्द न या पछाणे बिन हर नाम ना काल टरे जेता मोह में कर भूले मेरी मेरी करते शीन करे तान तन बिन सहसे सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जो बन तन खिसिया ताप कंठ बरुद हो नैनो नीर टरे चरण रहे कर कंपन लागे साग त्राम न हृदय हरे तुरत गई काली हूं तौले इसे ना पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लाग गए जाम मार सुमारे नरक खरे पूर्व जन्म को लेख न मिटई जन्म मरे का को दोष तरे बिन गुर बाद जीवन हो मरना बिन गुर शब्दे जन्म जरे खुशी खुआर पैरस भोगण होगट कर्म विकार करे ना विसार लोभ मूल खोयो सिर थर मराए का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गाव है जा को हर पर नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो संगत हर जन पाओ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक तीन जन की रेन हरे एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

तले उगाए बैसे हो, श्रम ना रहे हो शरीर, मांस अगर नए व्यापे किने उतरे हो तीर, चंदन अगर कपूर लेपन ते संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तेल तेल, मन ना मनी विपरीत, ऊच नीच विकार सुकृत, संग लगन सब सुख शत्र, मित्र सतर ना कशु जान, सर्व जी समत कर प्रगास, प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है करण लागे, मन ना पयो विकात, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्व थान समान, जहां साक्ष तहां लागेओ, तिल ना संका मान, तो पहाए अपहाए जो निपटे आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कश ना जाने, सदा सहज सुपाए, चरण सरण सनात्यो मान।

बेणी संगम आठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बहे अदली।

जो जुग विरली गुरमुख जाता साचा रब रहे या मन राता इसकी ओढ़ गही सो पाया मन तन मैल न काई है जी बरसायन साचे राती हर प्रसंगी पौना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है रख रख पैर तरे पो तरना जात का देखो तेरी सरना दो सुख दे तुहे मन पावे कुछ की सो बने आई है।

0: राम जपो तरतारी हर अंत सखाई पाया मारू महला पहला हर तन संचोरे जन पाई तद गुर सेव रहो सरनाई तस्कर चोर न लागे ताको तुम उपजे शब्द जगाया तू एक अंकार निराल महाराजा तू आप सवारे जन के कज आमर अडोल अपार अमोलक हर अस्थिर स्थान सुहाया देखी नगरी उत्तम थाना पंच लोक वसे प्रधाना ऊपर एक अंकार निरालम सुन समाध लगाया देखी नगरी नौ दरवाजे सिरस करने हारे साजे दसवें पुरख अतीत निराला आपे अलख लखाया पुरख अलेक सचे दीवाना हुक्म चलाए सच निशाना नानक खोज लहो कर अपना हर आत्मा राम नाम पाया सर्व निरंजन पुरख सुजाना अदर करे गुर ज्ञान सुमाना काम क्रोध ले गर्दन मारे होमे लोभ चुकाया सत्य थान वसे निरंकार आप जाने शब्द विचार सच्चे महल निवास निरंतर आमन जान चुकाया नाम चले न पमन उड़ावे जोगी शब्द अनाहद वावे पंच शब्द चुनकार निरालम प्रव्या पे वाय सुनाया पाओ बैराग सहज सुमाता होमे त्यागी अनहद राता अंजन सार निरंजन जाने सर्व निरंजन राया दुख पै पंजन प्रभ अबनासी रोग कटे काटी जा फासी नानक हर प्र सो पौ पंजन गुर मिले हर प्र पाया काले कावल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाण आपे जाने आप छाणे सब्त का चोज सुभाया आपे साहु आपे वणजारा आपे परखे परखणहार आपे कस कसवटी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रतारी कड़का रब रहे आप बनवारी पुरख अतीत वसे ने केवल गुर पुरखे पुरख मिलाया प्राभ दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मेटे एक दिखाए आसा महे निराल मजोनी अकोल निरंजन गाया हौम में मेट शब्द सुख होई आ विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सत फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे का रहना जीवित मरो पवजल जगत तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलखा मन हर जा पार लंघाया होमे ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिन आपे आप पाया गुरमुत ले वो हर लिव तरिये आकुर गाय जमते क्या डरिये जत जत देखो तात तात तुम ही अवर ना दुतिया गाया सच कर नाम सच है सरना सदगुर शब्द जिते लग तरना अकथ कथे देखे अपरंपर हुन गर्भ ना जो नहीं जाया सच बिन संतोख न पावे बिन गुर मुक्त न आवे जावे मूल मंत्र हर नाम रसायन कौ नानक पूरा पाया सच बिन पवजल जाए न तरिया यो सुमुंद अथाओ महाविख परया रे अतीत गुरमतले ऊपर हर निरपो कह कर पाया झूठी जगज की तराई बिरमन लागे आवे जाई नाम सार चले अवमानी उबजे बिन सुख पाया उबजे बिन से बंधन बंधे होमे माया के गढ़ फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोह मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है गुरमत लेओ तरो पवद तर मुक्त पाए सो पाया गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पहाण तारे गुरमत लेओ परम पद पाई है ना गुर परम चुकाया गुरमत लेओ तरो सतारी आत्म चीन हृदय मोरारी जंके फाहे काटे हर जप अकोल निरंजन पाया गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अग निवार समाई मां ने मुख नाम जपो जग जीवन अंतर अलख लखाया गुरमुख बूझे शब्द पतीज है उसत निंदा किसकी कीजे इनो आप जपो जगदीशर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जान हो गुरमुख बूझो शब्द पछाण हो घड़ घड़ पोगे पोगण हार रहे अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जा सूचा गुरमुख आखी देखो ऊंचा त्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू महला पहला काम क्रोध पर घर पर निंदा लभ लोभ तज हो निचिंदा प्रम का संगल तोड़ निराला हर अंतर हर सपाया निस दामन ज्यो चमक चंदायन देखे ऐन सजोत निरंतर पेख आनंद रूप अनूप स्वरूप गुर पूरे देखाया सतगुरु मिलो आपे प्रोतारे सदकर सूर दीप गयनारे देख अदिष्ट रहो लिव लागी सब तिरपुण ब्रह्म सुबाया अमृत पाए तृष्णा पो जाए अनपो पद पावे आप गवाए ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा निर्मल शब्द कमाया अदृष्ट गोचर नाम अपारा आतस मीठा नाम प्यारा नानक कहो जुग जुग हर जा दीजै हर जप गे अंत न पाया अंतर नाम प्राप्त हीरा हर जपते मन मन ते तीरा दो काट काट पो पंजन पाइये बौड़ जै मना जाया भगत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सबाया जिन जब जपेओ सदगुर मत वाके जम कंकर काल सेवक पगता के उत्तम संगत गातमित उत्तम जग पौजल पार तराया यो पवजल जगत सदगुर तरिये अंतर की दुबदा अंतर जरिये पांच बाण ले जम को मार है गगन अंतर तख चढ़ाया साग तनार शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन आईये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया निरपो सतगुर है रखवाला भगत प्राप्त गुर गोपाला तुन आनंद अनाहत वाजे गुर शब्द निरंजन पाया निरपो सो सिरनाही लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप अतीत अजोनी संपो नानक गुरमत सो पाया अंतर की गात सदगुर जाने सो निरपो गुर शब्द पछाण अंतर देख निरंतर बूझे अंतर मांडो लाया निरपो सो अब अंतर वसया तैरस नाम निरंजन रसया नानक हर जस संगत पाइये हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रव जाने रहे अलिप्त चलते कर आने ऊपर आद सर्व त्यो लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू महला पहला कुदरत करने हार अपारा कीते का नाही क्यों चारा जी उपाय रिजक दे आपे छेर सिर हुक्म चलाए रहे पर पूरे किस नेड़े किस अखां दूरे गोवत प्रगट हर कड़कड़ देखो वरते ताक सुबाया जिसको मिले सुरत सुमाए गुर शब्दी हर नाम ते आए आनंद रूप अनूप अगोचर गुर मिले परम जाया मन तन तंते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हार गुर किन सुख पाया जिसको नदर करे गुर पूरा शब्द मिलाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सरेब हो जिन पूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कहे हर दर गए जस गाया सदगुर मिले तमेल बुलाए साची दर गए गत पद पाए सागत ठौर नहीं हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सदगुर समुंद अथाह पावो नाम रतन तन लाह बिख्या मल जाए ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾ ਬਹੁ ਗੁਰ ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਸੰਕਨ ਕੀਜੈ ਆਸਾ ਮਾਏ ਨਿਰਾਸ ਰਖੀਜੈ ਸੰਸਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾ ਸੁਨ ਸੇਵੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਰੋਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਵਡਿਆਏ ਕੌਣ ਸੋ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਹਰ ਗੁਰਮੂਰਤ ਏਕਾ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਵਾਚੇ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨੇ ਸੁਨਾਵੇ ਕਾਨਾ ਅਜਗਰ ਕਾਪਟ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੇ ਬਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤ ਨ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਵੇ ਭਸਮੈ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚਿੰਡਾ ਸੋਹੋ ਮੈਂ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੇ ਜੋਗ ਨ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਨ ਪਾਇਆ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਉਦਿਆਨਾ ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਥੇ ਗਿਆਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬੇਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਨ ਜਾਇਆ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਭੁਯੰਗਮ ਭਾਠੀ ਰੇਚਕ ਕੁੰਭਕ ਪੂਰਕ ਮਨ ਹਾਠੀ ਪਾਖੰਡ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹਰਸੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ ਮਾਰੂ ਸੋਲਗੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਕਮੀ ਸਹਿਜੇ ਸਿਰ ਚੁਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਗਤ ਗੁਬਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕਉ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਮਾਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਹੈ ਹੋਮੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਪਾਈ ਮਾਨਮੁਖ ਫੁੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਏ ਰਾਚੇ ਸਾਚੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨਮਾਏ ਸਮਾਇਆ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਪਿਆਰ ਭਗਤੀ ਰਤਾ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਬਣਿਆਈ ਹੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤਾ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਭਾਉ ਪਰਮ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਈ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਜਰਾ ਜਮ ਤੇ ਜੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਸੱਚ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ ਤਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਜਲ ਜਲ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਵੇਕਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਕਬੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੇਵ ਭਾਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਰਵਿਆ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਪਛਾਣੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਬੈ ਰਾਗੀ ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਖਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝੇ ਸੋ ਮਹਿਲ ਚੁਕਾਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੇ ਮਨ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦਗੀ ਸੇਵ ਹੈ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਨਾ ਵਿਖੂਣਾ ਕਲਕਤ ਲੂਝੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂ ਗਵਾਈ ਹੈ ਆਪੇ ਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਖੂਣਾ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਤੁਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਤਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤਿਨਹੀ ਵਸਾ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਸੱਚੇ ਸਬਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਭੀਖਿਆ ਨਾਮ ਦਰ ਪਾਈ ਹੈ
1: ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਕੋ ਏਕ ਵਰਤੇ ਸਭ ਸੋਈ